0: Esperamos.
1: जो जाएगा वो एक शब्द।

0: लगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Job.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कुछ भी हो, आपका काम है परों तक पहुंचाना, पहुंचाया
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा, ये होमवर्क देते चेता, कि ये तो मास एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय के बचत अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी का हुआ भी है। मन जीत जगत जीत, तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे, वो हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देंगे। अपने रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। ये पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त संकल्प समय दोनों समाप्त और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्र संकल्प करो, संस्कार कट करो, स्वभाव का मत भेदो। तीसरी बात, कमजोर होने की होती है। कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपके साथ है। सारी झूठी दुनिया एक तरफ हो और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हो ही पड़ी। कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ।
3: Ciao।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वादा किया? बाबा तुमने माना, तुमने जो भी है, कुमारों के पास तो धन ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो भी है सब आपका है। ये वादा किया है, अच्छा हाथ ला रहे, ठीक पक्का किया है। तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी किया है किया। अच्छा तो जब

Era Chiara, enfermera panejo.

я артат апкипас манпи аманат то что ты кисми карте о мира ман парешан мере ман ме फिरत संकल्प आती है मेरा मन विचलित होता है जब मेरा है नहीं अमानत फिर अमानत में मेरा समझ के यूज करना से है मैं और मेरा तो तन भी आपका नहीं तो देव मान

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: रावण की चीज को मेरा मेरा कहते हो ना, इसलिए जाती नहीं है। पर ही चीज को अपना बना के रखा है ना, कोई पर ही चीज को अपने पास संभाल के रखे, छिपा के रखे, अच्छा माना जाता है। तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो? बड़े फखुर से कहते हैं, मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समापति समारोह करेंगे, करेंगे, करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो, जहां मन होगा ना वहां सब कुछ हो जाएगा। मन से मानो कि ये मेरी नेचर नहीं है, ये दूसरी की चीज है, नहीं रखनी है। आप तो मर्जी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: राज के अपने राज के बीच समय बारे तो बार बार अपने स्वीटों और अपने
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कम से कम हर एक अपरत वेला तो मनाते हो, जो अपरत वेला रोज सरोना

जगह अमृत वेले का साधन तो अपनाते कोशिश अच्छी कर रहे हो, अमृत वेले को महत्व देते हो, लेकिन आगे भी जो अमृत वेले में कभी कभी हो वो आगे बढ़ना, क्योंकि अमृत वेला दिन का आरंभ है, उसमें जरूरिया

0: सभी खुश है कि बीच में माया भी चांस लेती है। खुशी नहीं कमाना, माया आवे भी तो फौरन बाप को सुना के चेंज हो जाता। अगर बाप को नहीं पहुंच सको तो अपने निमित्त परों को जरूर सुनाओ। एक दिन से बनाना नहीं तो आदत पड़ जाए। ये अमृत वेले का अमृत पीना आवश्यक है। तो अवश्य इस समय सफल करते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा। समय पर ठीक हो जाएंगे, जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो, तो रचना का इंतजार रचना करे न कर। मास्टर रचता समय का इंतजार।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ऐसे वो माइक वाला जिसके आवाज पे ताकत हो, माइक उसको कहा जाता है। चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन आवाज में ताकत नहीं तो माइक नहीं। माइक वो जिसके आवाज में ताकत हो, ऐसा माइक तैयार करो किसी भी रीति से बेहतर को
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: du förtjänst för det med dig. Ikke som går vartan dit. Du ser babka bjära bandet. Vartata babke. Nearest or dearest bacha bandet. इसलिए बाप की दुआएं सुते प्राप्त होती और सदा प्राप्त होती। तीसरा जो भी ब्राह्मण परिवार के विशेष निमित्त बने हुए हैं और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से सदा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो जाएगी, लेकिन बोल में थोड़ा आधा कम हो जाता, कर्म में फिर पौना कम हो जाता, मिक्स हो जाता है। कारण क्या? चार को नहीं देखते।

विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन, तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन, बदली करे रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे।

0: से मरना पड़े, मैंपन से मरना, शरीर से नहीं मरना, शरीर से नहीं मरना, मैंपन से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैंपन से मरना है। तो मरना भी पड़े तो ये मृत्यु बहुत मीठा मृत्यु है, ये मरना नहीं है। 21 जन्म राज भाग्य में जीना है। तो मंसूर है, मंसूर है टीचर्स, तो बाप दादा यही देखने चाहिए थे, समझा, यही बाप दादा कि श्रेष्ठ आशाओं का दीपक हर बच्चे के अंदर जगा हुआ देखने चाहती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी संबंध है उसमें

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: फस गया, ये नहीं सोचना अच्छा मैं आठ में तो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है, तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: काफी

0: चिकरो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना, देना आता है ना, लेना तो आता है लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है, लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना, तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं दे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: जो भी, जितने भी आपके सेवा साथी हैं, उन्हों को ऐसे कोई कार्य हो अर्थ का वायुमंडल बदलेंगे तब संसार का वायुमंडल बदलेगा। निमित्त आपके अस्थान सेवा स्थान पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, लेकिन इस लक्ष्य को और पावरफुल बनाओ। जिसको देखे लोग शिकल से वाइब्रेशन से जान जाती है आजकल।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय सफलता की विजय।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा कितना वे आने का कारण थे अपमान का, मैं शब्द थे पान का, मैं ये मैं, लेकिन देवान के मैं शब्द अपमान का भी होता, अपमान का भी होता और दिल शिकस्त का भी मैं नीचे गिराता। तो बाप दादा आज
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कोई भी सेवा शुरू करते हो, चाहे देश में चाहे विदेश, बाप दादा यही कहती है कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल जैसे नारियल तोड़ के उद्घाटन करते हो, रबन काट के उद्घाटन करते हो, पहले इन चार बातों की रबन काट और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो, ये पानी डालो धरनी में, जो भी कार्य की धरनी है उसमें पहले ये नारियल का पानी डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती, नहीं तो कोई ना कोई विघ्न जरूर आता। सेवा सब करते हो लेकिन नंबर बाप दादा के पास रजिस्टर में नोट उसका होता है जो निर्विघ्न सेवादारी। बाप दादा के पास ऐसे सेवादारियों की लिस्ट है लेकिन अभी बहुत थोड़ी है, लंबी नहीं। भाषण करने वालों की लिस्ट भी आपके पास लंबी है। बाप दादा उसको भाषण करने वाला कहता है जो पहले भाषण दे सबको फिर भाषण। भाषण तो आजकल स्कूल कॉलेज के लड़के लड़कियां बहुत अच्छा करती है, तालियां बजती रहती है, लेकिन बाप दादा के पास लिस्ट वो है जो निर्विघ्न सबकी प्रसन्नता संतुष्टता वाले।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

5. Як пертити? Ось.

परिवर्तन कर सकते।

इस कभी कभी।

Amiga, amiga.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कोई भी कर्म आरंभ करते हो कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर वाली आरंभ करना, उसमें बहुत फर्क।

जैसे हद के मर्तबे वाले सीट पर सीट हो गए, फिर कार्य आरंभ करते हैं। ऐसे अपने मालिक बन के स्वराज अधिकारी सीट पर सेट होके फिर हर कार्य करो, इस

0: Óyeme.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती। दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इससे अभी ऐसी अनुभूति शुरू करें। आप साकेत काशी।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

0: Tja, hat nicht geklappt. Karriere. Oder komm, warte, keine. Arjuna,
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल कितने प्रोग्राम हो रहे हैं

रिजल्ट में।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Saladan plain me ayo.

Současné. Nerz.

0: Vicious Bjarren Sneen Sneen Kitna Kitna Tulna Kar Sakte Ho Kise Koi Tulna Nahi Ho Sakte
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

जैसे रावण को सिर्फ मारते नहीं है, मारने के बाद चला

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Szarvasság.

कैसे करूं क्या करूं नहीं।

चाहिए।

Ještě mu.

थोड़ा चेंज कर देते।

Neste poder. Neste

Kill.

अच्छे बनाते हो। बाप दादा जब रोड़ियां सुनते हैं, रोड़ियां बहुत हिम्मत की करते हो। Shit.

Adiós.

Pizza.

Zor sanga lamba emerge nahi karo smerti rakho ke abhi Yeah.

is at the God's saying. Yeah.

7. Hey. Sim.

0: να σάρακο.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से अलचल में आते हैं, उसका

होती है होती है, लेकिन कम। व्यर्थ ज्यादा होती है। व्यर्थ का तूफान हिला देता है और पहले सोच में आता है, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और किसका रिजल्ट में देखा तो बोल और कर्म में नहीं आता है, लेकिन सोचने में बहुत आता है। उसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये तीन बातें सोचना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से देने चाहते। तैयार है त्या तैयार है, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। ये नहीं कहना मुख से निकल गया न क्या करें, दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो मुख पर। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना, क्यों बाप दादा को बच्चों से प्यार रहना तो प्यार की निशानी है। प्यार वाले की मेहनत देख नहीं सकते। बाप दादा तो उस समय ये सोचते के साकार में जाके इनको कुछ बोले, लेकिन अब तो आकार ही निराकार है। बिल्कुल सभी मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाए। मेहनत को खत्म करे खत्म करे नहीं सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आप ही छूट जाए। छोड़ने की कोशिश

0: छाया के अंदर बैठे रहो। ब्रह्मांड जीवन का अर्थ है झूलना माया में नहीं। माया भी झूला झुलाती है, लेकिन माया के झूले में नहीं झूलना। अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूलों में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, अभी आनंद के झूले में झूलो, अभी ज्ञान के झूले में झूलो। कितने झूले हैं अनगिनत, झूले से उतरो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बाप दादा ने देखा समय अनुसार जितना सेवा का उमंग उत्साह अभी प्रैक्टिकल में है बनना और बनाना संपन्न बनना

इस पॉइंट के ऊपर भी स्वयं भी उमाकोत्सा में रहना और वायुमंडल में भी उमाकोत्सा दिलाना एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की

जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया, ऐसे अभी बाप दादा यही बच्चों में शुभाशय रखते हैं। वायुमंडल में फैलो,

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ, रहने वाली आत्मा हूं। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन, मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी बात

见。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: ब्राह्मणों का काम के शोक लगाना भी के मेहनत है के योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचती है, पाप की महिमा की ऑटोमेटिक मीठे मीठे दिल गीत गाती। ब्राह्मणों का काम ही है, गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है, नाचना गाना मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं ना? मुश्किल किसको लगता है? जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है? नाचो, गाओ, सहजे ना सहजे कान तो हिलाओ, सहजे मुश्किल तो नहीं है ना? जान बूझ के सहज से हट कर मुश्किल में चले जाते हो। है मुश्किल नहीं? बहुत सहज, क्योंकि बाप जानते हैं आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है। इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला? आप पीछे वाले मुश्किल लगता है? कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना? ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, तो क्षत्रिय का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना। वो तो मुश्किल ही होगा ना? युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा के साथी पाप तो सकाश देने वाले हैं, लेकिन साथी कौन? साकार का साथ तो परिवार का है। तो पाप ने देखा है कि तीन निश्चय में मेजॉरिटी ठीक चल रही है, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण के भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होगे, सदा बाप समान साखी बन के स्थिति में साथ में आते हैं, रहते हैं। वही नंबर वन या नंबर वन डिवीजन में आता है। तो चेक करो भाव स्वभाव परिवार में होते हैं। जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, विघ्न आते हैं, वो परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना आवश्यक है। अगर परिवार में चलने में, तोड़ने बहाने में कोई भी कमी होती है, तो वो विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे परिवार के कनेक्शन में आता है? तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है, परिवार की प्रीत निभानी। क्यों कि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार, रवासी परिवार नहीं। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Oh, strong.

痴情，不吉利。阿拉贝里曼没报答的，一道的夜，一道真的夜，真的多什么？Okay.

Otto, attention. Sama

0: समझ लिया, सोच लिया, तुम बाप दादा पढ़ाई पूरी कर देते। जब स्टूडेंट बन चुके हैं तो फिर तुम पढ़ाई पढ़े, फिर तो समाप्त कर देना। लेकिन इस अलग पीले पन को अच्छी तरह से
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज चारों ओर की सर्वश्रेष्ठ See.

0: es a ti.
1: Bye.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचार, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्कियां दो, लेकिन आपस सिक्या दो तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वैसे तो आप जानते हैं क्या रिजल्ट

0: सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा, अभी जुबान से भी किया किया तो सही ना। तो ऐसे प्रॉमिस करके फिर भी नहीं करने का तो लाइन में आ जाएंगे ना। तो जब भी कोई ऐसे हो उस समय सभा के बीच में हाथ उठाया था, याद करो। अपने आप को ही फायदा है। अब आप तो खुश हो, मदद मिलेगी ऐसे ही याद करने से। इतने सारे भाई बहनों के बीच में आपने अपने दिल से प्रॉमिस किया तो वो मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि जो भी बच्चा यहाँ हाजिर है अभी हिम्मत तो रखते है ना, चाहते तो है ना बनना, नहीं तो हाथ क्यों उठाओ, नहीं उठाओ कौन देखते। लेकिन सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो। बस प्रॉमिस किया बस छूट जाते। याद अपना हमेशा याद रखो, कितनी सभा है, बाप तो है, लव किया उसको हल्का नहीं कर। चाहते हो तभी तो हाथ उठाते हैं। तो जो चाहना है कहा है, हाथ उठाए नहीं, मन की मेरी चाहना है इसीलिए हाथ जाएंगे। और कौन बनेंगे, आप ही तो बनने वाले हो। इसलिए अपने में फेथ रखो, जो कहा है वो करके दिखाना है, ठीक है ना।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ótima.

सुख शांति।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: लक्ष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी है, लेकिन आप संगम युग पर जीवन मुक्ति
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा के पास पुकार और दुख की आए बहुत सुनाई देती, आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती। बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले, तो वर्षा लेने वाले को दूसरों को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए ना। रहम क्यों नहीं आता? वैराग, बेद का वैराग और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों क्या के क्यों मैं टाइम नहीं देना। अबे हे बाप दादा के सिक्की लदे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, कर्म योगी लाइफ वाले हो, लाइफ सदा काल होती, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु दयालु दुखहर्ता सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख के आवाज तो सुनो। अबे हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक विश्व को दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने वाले जिम्मेवार समझो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सबसे महान

Peter.

Charo Orfeld.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी सेवा करो, जिज्ञासु कोर्स वाले आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो, निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूं तो आज नहीं तो कल ये मैसेज काम करेगा, करना ही हिसाब किताब में जमाओ और उन्हों को भी संदेश मिल गया तो टाइम सभी को आना ही है, इसलिए करते जाओ। खर्चा बहुत हुआ उसको नहीं सोचो, अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। घबराओ नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कई बच्चे ऐसे होते कहते हैं मेरा योग ठीक नहीं था तभी ये हुआ, किसे योग था और कोई है क्या जिसे योग है और सदा रहेगा। बाकी सीजन का फल है, कोई हर समय का फल है, तो अगर कोई आया नहीं तो सीजन का फल है, सीजन आएंगे। दिल शिकस्त नहीं हो, योग श्रीमत को तो मानना, श्रीमत परमान कार्य किया, इसीलिए श्रीमत को मानना ये भी एक सफलता है। पढ़ते जाओ करते जाओ और पश्चाताप करके आपके पाँव पर पड़ी, आपने कहा हमने नहीं माना, यही आप दिव्या बनेंगे, आपके पाँव पर पड़ेंगे, तभी तो भक्ति में भी पाँव पड़ेंगे, तो वो टाइम भी आना है जो सब आपके पाँव पड़ेंगे। आपने कितना अच्छा हमारा कल्याण किया।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: स्वरूप क्या स्वरूप

सच क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉलेज की

0: अनुभवी स्वरूप का अर्थी है, यानी तो आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए।
1: Sorry.

सीट पर सीट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के साथ सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप

0: कुछ ना लगे, मनन करना लगे, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना। अभी इसकी आवश्यकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

इस मोटे रूप से

Eskilliste. Apas med निकालना बाप दादा आज नहीं सुनाते हिंट तो दिया ना तो निकालना आज इतना ही इशारा बहुत है क्योंकि सभी समझदार है आप सब जानते हो ना अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनेंगे लेकिन बाप सिर्फ छोटा सा सहज पुरुषार्थ बताती है कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क संकल्प करते हो तो चेक करो महामंत्र संपन्न है ऐसे ही बोल कर्म सब सिर्फ तीन शब्द याद रखो और समानता करो ये तो सही

0: संपर्क में।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदा कहते हैं कि फॉरेनर्स इस जन्म के फॉरेनर्स है, लेकिन अनेक जन्म के ब्राह्मण परिवार के हैं। अगर आप लोग विदेशी नहीं बनते तो विदेश के बिना बिना देशों की सेवा कैसे होती? अगर आप विदेश के रूप में नहीं आते तो बाप दादा को सब देशों की भाषा का यहाँ क्लास रखने पड़ते, तैयार करने पड़ते। तो आप लोग जो बिना बिना देश में गए हो वो सेवा के प्रति गए, समझा? समझ में आया क्यों गए हो? ओरिजिनल आप ब्राह्मण आत्मा ही हो, विदेशी आत्मा ही नहीं। बिना बिना विश्व की सेवा के लिए देखो, भारत में भी हर भाषा के बच्चे आए हैं और सेवा कर रहे हैं। नहीं तो पहले एक ही ग्रुप था, सिंध का ग्रुप, और धीरे धीरे बिना बिना देश का, चाहे भारत के चाहे विदेश के, आते रहे और बढ़ते रहे। ये भी ड्रामा में बना हुआ खेल है। वैसे भी पहले जड़ में थोड़ी होती है, फिर धीरे धीरे तना और शाखें निकलती, तो फाउंडेशन बना सिंध के देश के निमित्त, फिर धीरे धीरे फिर क्या बढ़ता गया, भाषाएं और देश की शाखाएं। आप शाखाओं में नहीं हो, आप तो बाप के साथ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा आपका साथी है, जहां भी मुश्किल आवे उस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: चेक करो, कभी दुख ले लेते हो, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। Follow.

समझते हो

Nossa,

Kisses for

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चैलेंज

समस्या

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुश नमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराते हैं। इसलिए अब इस समापति का समय भी लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, पाए का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जा फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुकद से नहीं लेकिन अपन ने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई गुण इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी मूर्ति कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं। तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे। जमा रखो, आप दे दो, परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा संबंध में होगा, तो विश्व परिवर्तन कहीं विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन, देते चलो भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। तो उसके मुकस से मन से ये शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक तो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो, उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक कहो या दुआएं कहो वो अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो ऐसा समान संपर्क में आओ जो दिल से मौका से मुबारक निकले वातुआई निकले ऐसा शब्द निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

जो आपके पास जमा है।

खुश बनने के कारण विघ्न विनाशक समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। डबल फायदा है, आज ये आया कल ये आया, आज ये हो गया कल वो हो गया, विघ्न मुक्त समस्या मुक्त। Choc

सफल करो, तो सफल करने से

0: जहाँ जाओ, चाहे सुख वतन में पहुंचो, चाहे परम धाम में पहुंचो, चाहे अपने राज में पहुंचो, सेकंड में। लंदन में प्रोग्राम किया था ना 1 मिनट का, बाप दादा तो कहते 1 सेकंड।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

परेशान नहीं होते।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: desperté.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब बाप ने अपना बनाया ब्रह्मांड जीवन दी, तो ब्रह्मांड जीवन का आप सबका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, याद है वायदा, याद है आका दिलाओ, याद है अच्छा दिला रे, अच्छा याद है पक्का कि कभी कभी भूल जाते हैं। जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो, तो बाप बच्चों से पूछ रही है बचपन वायदा याद है, कितना सहज करके दिए। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है, ईश्वरी परिवार, लेकिन परिवार एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार। परिवार में भी एक दो में आत्मक सने सने नहीं आत्मक सने, बाप दादा याद दिला रही है जन्म के वायदे। और क्या वायदा किया? सभी ने पढ़े उमंग उत्साह से, बाप के आगे से कहा सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप की अमानत रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। आपने बाप को दे दी, दे दी है ना कि वापस थोड़ा थोड़ा ले लेते हो? वापस लेते हो तो अमानत में खयानत हो जाती है। कोई कोई बच्चे कहती है, रो रियान करती है ना, तो कहती है मेरा मन परेशान रहता है, तेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बेनकोटी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बेनकोटी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वो आपका खजाना हो गया तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वो बच्चों का खजाना, बाप दादा वायदे याद दिला रहे, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते जब बाप ने आप सबको परमात्म खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किस शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी होई, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारा, ये वायदा है ना? बाप कहते हैं खजाना

0: सर्वशक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ, सर्व बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन सर्वशक्तियों को समय पर मार कार्य में लगाओ और सेवा में लगाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दूसरे किसको नहीं देखना, सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, दूसरा कड़े न कड़े करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना, कमजोर
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आजकल तो मेरे में एरिया का झमेला ज्यादा हो गया। मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की क्या हद की एरिया होती है, सब छोड़ना पड़ेगा। ये भी देश का अपमान, देश का पान फिर भी अलग की चीज है, लेकिन देश का अपमान ये बहुत सूखम है। मेरा इसको ही देश का अपमान कहा जाता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वचपोड़ी से करने वाले का सदा नहीं होगा, कभी कभी होगा। दिल से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेला पन और के हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेला पन
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

course.

あ、

Sete jogos.

Katzen. Yipparmadım seni. Sada. Sarva praptyon kafal. So

मस्तक में अनुभव करते हैं। अविनाशी सने सारा कलप सने ही बना देता।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, योग बाप को सब प्रकार के संकल्प वा जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का भोज वो दे दिया है ना, भोज दिया है या थोड़ा सा रह गया, क्योंकि थोड़ा भी भोज फरिश्ता बनने नहीं देंगे। और जब पाप आए हैं बच्चों का भोज लेने के लिए, तो भोज देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं भोज दे दिया है वो हाथ उठाओ, दे दिया है देखना, सोच के हाथ उठाना, भोज दे दिया है, दे दिया है। अच्छा दे दिया मुबारक हो, दे दिया है तो बहुत मुबारक हो, और जिन्होंने नहीं दिया है वो किस लिए रखा है? भोज से प्रीत है क्या? भोज अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ लेने के लिए बाप आए, क्योंकि तेसर जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते बच्चे सभी। बहुत भारी हो गए, इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं भोज दे दो, फिर भी क्यों रख लिया? अच्छा लगता है भोज? सबसे सुखम भोज पुराने संस्कार का। बाप दादा ने क्या देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार के आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर तो कटता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसीलिए आज संस्कार का संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ने चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में दीवार पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन दीवार पुरुषार्थ ही नहीं। कारण दीवार पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी, ऐसे

0: It's a never a me. Yoga Akanese Chalaneka Thread Sanka Lapka Ade Chandra.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सभी बच्चों से खुश है, लेकिन रोज अपने को रात्रि को बाप दादा का याद सपने को देना बाप दादा देता है, और आप अपने आप को देना बाप दादा छोड़ते नहीं है, चाहे इंडिया है चाहे विदेश। जैसे अमृत वेले चक्कर लगाते हैं, ऐसे रात को गुड नाइट भी सबसे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी समय अनुसार दीवार पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। दीवार पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना, बेफिक्र बच्चा का रूप देखना अभी इसी रूप को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्रह्मा बाप को देखा, कैसा भी बच्चा हो, शिक्षा दातापन शिक्षा भी देते, लेकिन शिक्षा के साथ प्यार भी दिल में रखते और प्यार की निशानी है कोई पांव का प्यार नहीं, लेकिन प्यार की निशानी है हर आत्मा के वृद्ध कैसी भी है, कोई भी है, लेकिन अपने शुभ भावना से शुभ कामना से कैसी भी माया के वश आत्मा को परिवर्तन करना करना भाव नहीं आवे, ये तो बदलने वाले नहीं, ये तो है ही ऐसे नहीं। सुनाया ना, अभी आवश्यकता है रहम दिल बनने की, क्योंकि कई बच्चे कमजोर होने के कारण अपने शक्ति से कोई बड़ी समस्या से पार नहीं हो सकते। तो आप सहयोगी बनो, किसे सिर्फ शिक्षा से नहीं, आजकल शिक्षा सिवाय प्यार या शुभावना के कोई नहीं सुन सकता, ये तो फाइनल रिजल्ट है। शिक्षा काम नहीं करती, लेकिन शिक्षा के साथ शुभ भावना रहम दिल ये सहज काम करता है। ब्रह्मा बाप को देखा, मालूम भी होता कि आज इस बच्चे ने भूल की है, मालूम है, लेकिन उसी बच्चे को शिक्षा भी तरीके से युक्ति से देगा, लेकिन फिर उसको बहुत प्यार भी करेगा, जिससे वो समझ जाते थे तो पापा का प्यार है, और प्यार में गलती महसूसता की शक्ति उसमें आ जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: बाते नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा, आप अपने को।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Mafia.

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। See?

Tony.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा के पास कोई कोई जाए
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हर एक बच्चे को चाहिए इंडिया में रहती है या फॉरेन में रहती है, लेकिन वरदान सभी को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: एक वाणी, दूसरा स्वर, शक्तिशाली स्थिति और तीसरा श्रेष्ठ से बोलते वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता है। ऐसे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Savon.

पाप देखे

शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं।

娃娃，都给我个故事，故事比巴多的，爱尔盖，阿布吉乌斯科帕卡列的，故事巴的。Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जितना बच्चों का बाप से प्यार है, उसे ज्यादा

Jessica.

मेरा बच्चा इस

Yoga.

Sei Jörg.

0: Scheiße an Marco. Practical Mellow.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

franzo ti è, fanciano ti è, usme amara vi paro na jai, agar bhi hum log ko kab chance mile, aur aapki ichha hai आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिलता है, तो उस समय चिड़चिड़ा बना

उनकी वृद्धा व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। अब फर्क करना, विचार देना, इसके लिए उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वह मुख से Swap.

força.

Radio-Amateur.

Alles.

Vishesh. Guardian. Shea. Que किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी Joe.

सुनते रहिए शिवा रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबके दिल में कौन क्या कहेंगे, मेरा बाबा

Papito, me dormite, tu ya piate, mire papá, mire papá, harik bache que manase, dejo. कौन समाया हुआ है दिल में मेरा बाबा हर एक के दिल में मेरा बाबा मेरा बाबा क्योंकि ये प्यार बाप और बच्चों का अलौकिक प्यार इस सारे कलप में इसी जन्म

το πόλο, χαρή και τελ.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

the week.

Erde. Yeah.

सामने लाओ और उस रूप

Exorcise me.

0: domande. Exercise. Sada. Tigring. Jesse. Sharir ki. Exercise. Sharir ko. Tundrast rakhti hai. Aise. Ye exercise.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Take
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अगर बापू समझ के कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन में भी वर्षा ले सक। अच्छा है, कोई शक्ति है, समझ में तो आता है, ऐसा नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं, समझने वाले देखने वाले नहीं। अगर एक दिन में भी पाप माना दिल से तो वर्षे के अधिकारी बन सकते।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

दूसरे अलबेले पद के भी यही शब्द। कोई का

छोटी छोटी बात में।

von Ralf.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी दुख बहुत बहुत बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा, इसलिए मास्टर सूर्यवन अनुभूति की किरणें फैलाओ। जैसे
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जैसे यहाँ रहते

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: इस सीजन में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाने चाहते, सब टीचर्स उठो, दिल्ली वालों का पीछे। देखो कितने टीचर्स, चौथा हाल तो टीचर्स है।
2: 2000 टीचर्स आई है, 21,000 भाई बहने आए हैं, 2000 टीचर्स आई।
1: खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप के टीचर्स को

Yeah.

0: ये बर्दकियता करनी है ना।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

什么吧。

Gel, gel, diyor Kapika. Kapika.

माया से।

खुश्क करते और बाबोश मिलाते कि तुम मेरे हो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: इन्होंने 5 दिन फुल स्टॉप लगाने की पट्टी की और पांच ही दिन लगातार कोई भी मिस नहीं हुआ। आज शुरू भी की और अंत तक आपके सामने, तो ये पुरुषार्थ अच्छा किया। ऐसे आप लोग भी ग्रुप ग्रुप बना के अंदर ही अंदर पुरुषार्थ, चलो दो जने हो सेंटर पर, कोई एक सखी को साथ बना दो और अपने बड़ी को सुना दो। तो क्या है, पट्टी करेंगे ना, विशेष नियम बनाएंगे तो उसका मदद मिलेगी। तो बाप दादा को अच्छा लगा। अभी सहज पुरुषार्थ हो गया ना, अभी वहां जाके भूल नहीं जाना, बातों में नहीं आ जाना, फुल स्टॉप में नंबर 1 लेना।
3: दूसरों को कराएंगे
2: भी और अपना अनुभव सुना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

money.

siempre mamá. Rose.

संकल्प को समाप्त करो तो आज बाप दादा यही चाहते।

7.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: चारों ओर सेवाओं के समाचार बाप दादा सुनते रहते हैं और दिल से सभी आतंक सेवादारियों को मुबारक भी देती है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से कर रही है और आगे भी करते रहो, लेकिन सेवा और स्थिति का बैलेंस थोड़ा सा कभी इस तरफ झुक जाता है, कभी उस तरफ, इसलिए सेवा खूब करो बाप दादा, सेवा के लिए मना नहीं करते, और शोर शोर से करो, लेकिन सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। स्थिति बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है और सेवा तो सहज हो जाती है, इसलिए सेवा का बल रहा थोड़ा स्थिति से ऊंचा हो जाता है। बैलेंस रखो और बाप दादा की सर्व सेवा करने वाले आत्माओं की संबंध संपर्क में आने वाले ब्रह्मांड परिवार की ब्लेसिंग लेते चलो। ये दुआएं का खाता बहुत जमा करो, अपील की दुआओं का खाता आपके आत्माओं में इतना संपन्न हो जाए जो द्वापर से आपके चित्रों द्वारा सभी को दुआएं मिलती रहेंगी। अनेक जन्म में दुआएं देनी है, लेकिन जमा एक जन्म में करनी है, इसलिए क्या करेंगे स्थिति को सदा आगे रख, सेवा में आगे बढ़ते चलो। ये नहीं सोचो ब्रह्मात्माओं के लिए अच्छा है, अच्छा ही होना है, लेकिन बैलेंस वालों के लिए सदा अच्छा, बैलेंस कम कभी अच्छा कभी थोड़ा अच्छा। सबसे आश्चर्यवत होके सोचने को फिनिश करो, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। वो स्थिति को नीचे ऊपर करता है। समझा?
4: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Cabra.

Thomas.

0: विजय की चैलेंज करो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी।

सारे लाइफ में हद तक का मेरा पन, हद तक का मैं पन से न्यारी, रही है उसकी रिजल्ट। बीमारी कितनी भी है सिनेरी, एक ही शब्द पक्का है, कोई भी पूछता दादी कुछ दर्द है, दादी कुछ हो रहा है, क्या उत्तर मिलता? कुछ नहीं। क्यों? निशानी देख रहे तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा तो बच्चों को एक सेकंड भी नहीं भूलता है, बाप एक और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी एक सेकंड भी नहीं भूलते, क्योंकि सिक्की लदे हो। देखो साथ देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, ज्योति बिंदु। डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, साथ देखी बाप ने, काला है गोरा है, श्याम है सुंदर है, कुछ नहीं देखा, मेरा है ये देखा। तो बताओ बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है, दोनों का है। बच्चे भी उत्तर देने में होशियार है, कहती है बाबा आप ही कहते हो कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है तब तो खींचता है। होशियार है बच्चे भी, और बाप को खुशी है रखने वाले बच्चे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दादी कहती थी मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला शरत में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरशरत करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे ही अमृत वेले से लेके रात रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावे जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। ये हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: संस्कार

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: समय

Ahí, pues, chévere.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

தம்பி, என் மண்ணு

così chi c'è la... sapasti di caidere papi del me Yo te lo...

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप भी फ्रिश्ता ड्रेस जैसे बिना ड्रेस बदली करते हो ना, वैसे बीच बीच में सारे दिन में ऐसे फ्रिश्ता ड्रेस बदली करके टेस्ट लो ये भी, बस बाप दादा इमर्ज करो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इमर्ज करो, मैं फ्रिश्ते रूप में हूँ। वस्त्र बदली किया साधारण से फ्रिश्ते रूप की ड्रेस पहनी और बाप दादा कभी ज्ञान के कभी शक्तियों के कभी गुणों के रंग डाल रहे फ्रिश्ता ड्रेस पे। फ्रिश्ता बन के 5-10 मिनट अनुभव करो, फिर वस्त्र बदली कर दो। कर्म योगी है ना, तो ये दिन में जब भी टाइम मिले फ्रिश्ते की ड्रेस पहन लो और बाप द्वारा ये रंग लग रहे ये अनुभव अभी से प्रैक्टिस करेंगे ना फ्रिश्ता ड्रेस की, तो ड्रेस पहनने से नशा चलेगा और मदद मिलेगी फ्रिश्ता बनने में। तो होली की ये सौगात बाप दादा चारों ओर के बच्चों को दे रहे हैं। ड्रेस पहनते ट्रेल करते जाना, बोलना नहीं, फ्रिश्ता ड्रेस सौगात में दे रहे हैं होली की सौगात। तो बीच बीच में ये अभ्यास करना, सहज है ना, ड्रेस बदलना तो आता है ना, आता है ना। जैसे ये ड्रेस बदलते हो ना, रोज बदलते हो ना, तो फ्रिश्ता ड्रेस भी बदल के देखो कितनी सुंदर, कितनी चमक।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: स्वयं दोनों

जो को होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनना है। आज बाप दादा इसी somebody.

Sua parte.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: से दूर नहीं हूं। सभी को तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की राज संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हो सवाल के संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते समझते हैं कि इस संकल्प से गेट का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाए। चेक करो कोई भी हमारे से नाराज नहीं लेकिन भारी भी नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा अगर बच्चे को देवर पुरुषार्थ स्वरूप पे देखने जाते कोई भी

del Quito a Elena. Rosa Bradwelle. Apaneco. Papito a Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा यही चाहते हैं, आप थोड़े समय में के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हैं कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, बनेंगे प्रारब्ध वाले बनेंगे। हाथ उठाओ, हाथ घुमाओ, अभी पुरुषार्थ कर रही हूँ, पुरुषार्थ

sempre.

essa.

0: escuché Remdel Banal. Escuché conozca se yo que tina escuché Shaktionka Sayordina Master Tata Bano Lina Tulik Babselo Agar Orat Mausibi Milna hai to pap ka diya hua hi milega to tatapan frag del bano titirao
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती

सिर नहीं पकाते, तो माया की भी आदत पड़ जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है, माया आती है, सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं? आप ही संपूर्ण तो नहीं बने हैं, कोई नहीं संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं।

Morceo.

Nossa.

चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय कि समय

ऐसे समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को हर बच्चा दिल का दुलार है, चाहे नंबर वन नहीं है, लेकिन नंबर वार है तो भी बाप दादा का हर कलब का सिक्की लता बचे, इसलिए अपने सिक्की लते सदा याद रखो। छोटी सी बात है, सिर्फ कोई भी मुश्किल आवे दिल से ऑर्डर करो, मेरा बाबा बाप अवश्य बता हुआ, लेकिन दिल में और बातें नहीं रखना। मेरा बाबा भी कहो और दिल में कमजोरी भी हो तो बाप सहयोग नहीं दे। दिल साफ मुराद हासिल, किचरे वाले दिल में बाप नहीं आता। और समय से याद करो, सिर्फ ज्ञान के आधार से याद नहीं करो। सुनाया था, ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। सिर्फ ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया। प्यार से बाप को याद नहीं किया तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Nastagmi. Chamaktihui. Body.

Wat wou ik?

Yes.

Musiquitinha.

Yeah.

0: ASMR. श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्वरेखाएं प्राप्त होती है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: भगवान के बच्चे अगर सदा खुश नहीं रहेंगे कौन रहेंगे? आप ही हो ना, चेहरा कभी भी शुभ चिंतक। जब चिंता आवे ना किसी भी प्रकार की, तो पाप मेरे कंबाइंड चिंता पाप को दे दो, शुभ चिंतक आप बन जाओ। सदा हर्षित रहते हैं ना, तो बच्चे मुरझाए हुए हैं।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

ही सोचता।

Ich.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Chatty.

Dosta kýšatý. Kysí mi prkárky.

особо всяко. Се.

Jag har sån dust där.

is a me. Why you wonder, Lord? Yes, sir.

Mann, ich.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी समय पर मान सब अचानक होना है, पता के नहीं होना है। जैसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था ना, तो आप सब अपने स्वमान के शान के सीट पर रहो तो परेशान नहीं होंगे। शान में नहीं रहते ना, स्वमान के शान में तो परेशान होते हैं। छोटा सा पेपर टाइगर होता है लेकिन परेशान हो जाते। तो इस वर्ष एकाग्र होके स्वमान के सीट पर रहना, कुछ भी हो जाए अपने स्वमान के सीट पर एकाग्र रहो। और एकाग्र सीट पर सेट होके अगर कोई भी बात आती है ना, तो एक कार्टून शो के माफक देखो। कार्टून देखना अच्छा लगता है ना, तो ये समस्या नहीं है। कार्टून शो चल रहा है, कोई शेर आता है, कोई बकरी आती है, कोई बिच्छू आता है, कोई छिपकली आती है गंदी। कार्टून शो है, अपने सीट से अपसेट नहीं हो, मजा आएगा। अच्छा शेर भी आया, कुत्ता भी आया, बिल्ली भी आया, देखते रहो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्यारे प्यारे बाप दादा सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं, सुंदर दृश्य आप

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, कुछ समय से बच्चों को ये बता रहे हैं कि वर्तमान समय

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा, अभी समय के समीपता अनुसार हर एक जो भी बाप के स्थान है, चाहे गांव में है चाहे बड़े सोन में है, सेंटर्स पर है, संभाल के रखेंगे, तो दिल में संभाल के।

0: веселее экшен. Обим.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहिए। जानते भी

Number 1.

अच्छा अच्छा रहे ना, कितना भी सारे कलप में सत्यों की

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

fuck.

0: decían por mí. Por favor, hártenme. Sabe, pero sabe.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।